मदम शेख गुरु सिंह ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबिरे से रेडियो क्लास चनी हूंफू मंगा सुब तंगक क्लास सेवन साइंस के लेसन तराहुमदोई मोशन एंड टाइम थौरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तिंग मंगलुइनना संदोक्चब थौरमनी

0: bada su tap na sa laga dum tap pi thu na sa laga na dum yang madu mai na cycle su khong ne ta khong na thu na o laga yang na sil ya duga tap na o laga na tap na sil adu gum na engine pan ma gari da na accelerator lai khat pa na tra ga ne sin ma tau du na ne yang na chelan ge chel haloi hai ba se sanari bani ne
1: o how zik ti tap na chat li ba yang na thauri sigi maram khang la ni
0: adu already speed hybridi khongjel haibasi karibu khangnagani haibasi nakhoi khangdro
2: babu a
0: how
2: speed hai si kaino na hangadi komain khumnya
0: oh cycle na khangde hawa gari na khangde ihan hana thauba matamdadi tapna sum hawra aga sum sum sum sum thugalakna khwaidagi yangbi gi changdu yobra iko yobra
1: adu budi chumina hek thawbaga adum yangna chelo haibadi ya suya roi
0: go sumaina tapna senba hauraga amukhu yamna yangkhatpa aduga amukhu tapthra da ba yadaduna khara hek tapthra duna ashang balamma ma chatpa yaidna
2: adu budi adum yani ye
0: masida nakoina khanga do budi ne ashang balam duma chatpa da matam kayamna changni haibasi ma khanga do buni ko
1: चटपगे वादे सुम खल्लु बनिना मतंगि वादे मदि कावहे
0: मतंगि वास म कावो सुन्या या देखो कई गनो हाइबदा सटि बलमगि असांग बदुदा मधु चटपद चंगब मतम दुना येन थोप मतम दने मधु दताब असांग बदो स्पीड हाइबदि खोंजेल हाइरि बसे ओय कदोरि बने
2: अदो पाबुंगि दो ज्ञान मुन ताबंगम देबो
0: ये इराय लाय दुबो यंगो किलोमीटर चनी छांगबा मफम अम गाड़ी ने थौरग चटपदा पुंग मरी चंगे हैन लौरो अदुरदी पुंग मरी दुना किलोमीटर चनी द येन ब मतमदा कया थुंगे यांखै थुंगे दना अदुना गाड़ी दुकी स्पीड हाइबदी खोंजेल से पुंग द किलोमीटर यांखै गी चांग द थौबी हाइगदोइ
1: ए याम लाइना स्पीड पुथो फया जानिना
0: ए सली बलमगी असांग बगा मधु चटपद चंगली बम दुगबु खंगलबदि स्पीड हाइबदि खोंजेल पुथोपसे अदुम लाइरेदा मशीन तबा मतमसी कमाई तो ओन बगे हाइबसु लेरिको नखोय नहालवाईगे पेंडुलम हाइदुना घरीगी मखादा हाय हाइदुने लैबा अम याबुदु उरब्रा
2: अदुबुदि एखै इपुबोकी अदुम बफखलांग गारी अम लैना
0: पेंडुलम दुना मयाइदिगी हौदुना येलोमद अमुक हाइरुरगा मयाईद मुख हलपा देखी मयाईद की ओयोम द मुख हायरगा मयाईद अमुक हलपा असे ओसिलेशन अमा हायरग खंगने को मसीबुने टाइम पीरियड हायरग सुखने रिसे
1: टाइम पीरियड हायबनी को बाबा
0: कवे कवे समयना पेंडुलम की ओसिलेशन गा घड़ी की खोंचत का मरी लेना हंदुना टाइम पीरियड हायरी बसे पुथोलक पदेगी घरीना मतम ताकु नमली बनी खंगाबा
2: अदो बाबुआ हाउजिकती इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक नाक तोय न उरेंगो
0: इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक पु क्वार्ट्ज क्लॉक हायरगा सुखंगने को हायरी ब घरी सिना मतम पीबु की चांस है हेन चुम न पीबु नमी को खंगाबा नखोय मतम मतम गी ओइन सीली ब गाड़ी की खोंजेल की चांसी छी यौरे हाइबसी करीना ताई हाइबसी नेम खंगंद्र
1: खंगनिंगे
0: अदु दि हायरगे तारो
3: थौनरीबा मोटरसाइकल स्कूटर मोपेट नचिंगबदा हेक एंगबदा उगदावबा मफम ममांगदा पानबा मीटर सिंगदी चेलेबा गारी की खोंजेल कयाम कन्न चेलेबगे ताकबा मीटर अमदी गारी की थाव कया यामना याउरीबगे हाइबसी ताकननबा मीटर पाले
4: हाइरीबा सिंगसी कार अमदी गारी अचौबा सिंगदसु अदुमक पाले मखोइदना मरु ओइबा मीटर खरसु हेना हापचिनदुन पाले मखोइदुदी इसिंग कया यामना सारे खंगनब मीटर कयाम सतली ताकनब मीटर डायनामो हायरिबसिना बैटरी द चार्ज करम हाइन तौरी हाइबसि ताकब मीटर कयामुक पाले
3: गारी द याउरिबा महाकी चेलिब स्पीड अदुबु ताकलिब मीटर अदुबु स्पीडोमीटर हायरगा खंगने मीटर असिद याउरिबा कताना गारी न चेलिब खोंजेल अदुगी मतुंग इन्ना थिन थिनदुना लेप लैतना ताकतुना अदुमक ले
4: अशिगुंबा गारी अमगी खोंजेलबु मतम मतम की मतुंग इन्ना अशेंग अशेंग बक काताना थिन थिनदुना ताकपसी

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
1: हाँ
0: हाँ, क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मदंगी खुदोलदा कांगचुप संजन बमदगी रोमाटा के लंबम मरुपसिना थाबी रखबा एसएमएस अममुक लखुचरी मरुपसिना खुराने खन बिरखली बा इसैना योट की थमोई फिल्म सिदगी एके यांगोइन सखबा ओजित बाबुनिंग थौजम ने सैरिंग बा अमदी ननाउ सगुल मांगना सैरंग बे सैसिनी।

0: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
1: मेरे दोस्त ने बोला
2: देवर जी की सुनो।
3: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
4: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
5: मतांग सिदा गुड मॉर्निंग मणिपुर की थौरम लांथुक चबा लोइसंजरी थौरम सिदा सरुकियाबी खिबा मदी थौरम ताबी रिबसिंगबू थागत पफुंदुक चली।

ताबिरिबा से मेगाहस चामा अहम दशमिक मंगारे संदक्चरिबा आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल दिगने हाउसिक ताबिरिबा सिंगिदमक लांथोकचरी गीत गीत खुरुल के अहम बदा ताबिरसी सोनू निगम मदी श्रेया घोषाल अनिपुन सक्मिनबा गीतमा

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
1: हाँ
0: क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मोहित चौहान गिनाई तुम खुंजलता गीत अमुक तमिन सिंह।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: गीत खुडोल के अरोबिदा लोबी रसी अरिजीत सिंह रोज की लामदी खुशबू सैसकप सिंह सिदगी गीतमा

0: ये फजा पके आसे ये मीना नन बनंग से आइन पुरे ही बने
1: इस होइने अदे बदी नंग से इथा थाजे देबा एखोनि से वसक नसी पो
0: वसक पो कै दौ दौरी बा
1: अस वसक नसी वसक नसी
0: अ मीता नीदा
2: ओ काय दे काय दे वसक नो ओ एछु साकी होय बिगे
1: इनमा इनमा न साकी होय बिगे दपनी को
2: ओइ रे गलो रे दना अदो बुने
1: हे लोकतांग इमाई बेमा उरीबा फजारबा सिंदुम मसासिं अथापगी संबानबा सिंग सांग परेंग सिंग नखोय लोइनम खंगबी नसी पुंसीगी हिरेल सकलबा हिसिदा फमिननरीबा ऐगि थवाई ओइरीबा ऐगि इबुङो सखलबा माबु ऐना मिनमदुना माबु हुन्दोकलमबा मागा काइनारबा ऐगि लेमहौरीबा पुंसिगि तांखक पुंबा नुङाइबा हाइबदो खंदसनु आवाफमद तागि
0: यारे यारे नंगि वासक्तो खरकनलि
1: अस्कन्दे वालिबनि नंगसुसो
0: ओ मोंसुकि सिंगलो लानगदबगि थौरांगलिबा कोरोङानबा ngasi ko ban numit wari lotion ga da bagi mathau silliba mawong mawong gi lechin da nang gi mangan ma sek chinna bagi thau silliba koro han bai bunga chin kharba marak tu da asimat tang ta bi haujik haujik manglan gum inak ta phamin nerbi malem si gi phajab punamak ta gi ai gi pham da de pum hen hen bi phajer bi be ma se nung si bi se मान बुलाले ऐनु बुलाले ऐ खुइनी काइनरबा कना गुंबा मगा ऐ जुम पांजरोय यारा प्रा यारे को
1: यारे वसकसे सुमन सखलाबा नते को वसक ए गाकता बदने आवा फम दता नसी को
0: होइनी होइनी ऐ दिङा कनी ऐ न थाजद्र बदी नंगनी

0: nanti sel thaba dubu nang na thaba ya driver ama na bai wa pa ma thaji le idu bu
1: ama na tro ai su nangi sali ure mayam su lupa lupa phange
0: sha thari du ya mal le ba nanti makhai makhai tha ya dro
1: lupa thari ba do ibe ma nangi na mai ne
0: mai ne nang su sangak tena ima su la e ima da uhning ba hanging ba nga sai sel thaba nu pa do kam do wi ga na
1: o soi kre amma du gi matam su la khini
0: aiko nungkara tamale lao dai sang ma si da pham se
1: ya ya cho sara su na sum lang gi ne
0: is is is nung ki tang sot pa du na ga sum lang gi awa ba khang ba ga dia re ko
1: matam la khini
0: e khe si za khu ko na ti na ma na ba sing cha khra ba
1: satri da
0: ओ अदिदि एखैनि वारि सानना बा थादोमिनि ने आ सोमदने सोमंगोलदा नमाना बसिंगा इमाना बिसिंगा सिल्लगे अदु आइको थोरैसिबो कयागे
1: ममतो मयाइदा साली फजना साय नंगना मुंगिंजेकि सामब्राय माना ताखैलैना सो
0: से पुजाख्रो युंदा मुनयादा थमुरो अहिं जुपनम बिरुरो से
1: ऐसे कया द लाइबक फरब
0: नासोम सो लाइबक फबिनी ताद गुंबा अथोय बनुपागे खुद अमन पाइबीबा आ आइने जगोय मुते याव गगे को सेल थाबा संग अदिने इमा ओहन गे को मयानु पामा सख फजबा मा
1: नय कु मया पमिने किसी वरी शाब साद
0: वरी दिलु इरि कैनु याना रे देपना रे सखना रे मतम सुंगाय बलेर रोय इमान हाइबीरे पीयूसी लोय बलोय दबा बीए लोय बलोय दबा खनगन माता साहब लुपा पाबला आदिने हे तंगती सब नत्रग खंगराव का पैदा खुदुम बिना यानो लाइरिक्ती को न तंबया यारे को चंगे तुमिने चेन थिनु को खेसी जामिने खेसी को
1: तुमिन चेन भाई बदो नंग याव द्रदी से लोय

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो ताजरी ताजरी हाई बियो गुड आफ्टरनून लेडीज के थोरम नी मिंग ले फ्रॉम हाई बियो
1: फोन फोन में लाइक है दा
0: होय होय
1: तो आई जी रिव्यू वाज खत्म कर दो स्टार हो दे
0: होय होय
1: अंदर लेडीज प्रोग्राम जे जे पम भाई कर आई नाउ पास नहीं कर वो जी मैं आप फोन नहीं नहीं का
0: होय होय
1: अब फोन नरंग हाय कटा तो नहीं ये वीडियो जे अरे तो जा ले तो बजे दाई के रोजा नु मत खम जु खम दे बलि ती मरम जु खम दे तो छाई चार ड्रम ने ना
0: होय होय
1: अब इरांग जी की मतांग की ने नो हाय रे यम नो आई जेमे दा के नो खजिंग मयाम के नो को नो पुकती त ना ताउ रि बा अब ग्यास की मतांग दो छाई जी दो
0: होय होय
1: ग्यास की नु पी ने ने के नु पी ने ने ग्यास तो ते दो वा वा हाय द दी लु दो का ग दी हम पाकत पर लु जे ना गाम पाकत लु मत तो ना गनि को adong sai mis point ti baje mo ye tha je ase ki je march ti get ti in the logi bane ba adu hu ji phog da mo mis kon ja ba gi mata ti di ba ya sa na ke no la igra ga ni da march april may yo me lo ira ba kum bane adu akoi gas book koi ani chu ba gi thong ni thong ba di adu ba mai na yam tam tam te ko ki me pi ding ge lo ma ti wa na ja ne koi ke na ti adu ma si gi
0: फोन फंग वरी सारे इशूसी की मतलब सुख पीरमे को मिंग तक पीरमद्री मैं पुनः खमीनसे सना सम कानोन बला नुंगाइजेको ग्यास की इशूसी कॉलर अहम है तारेको कानोन बला थारगा थब सिस्टम

0: हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून तराम नौ चरी कना हो बिरबनो।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मिंग लाइफम हाय बियो।
1: डब्ल्यू कानन बला लमथेन।
0: डब्ल्यू कानन बला, कानन बला कमाई तो रिगे नुगाई रिब्रो।
1: निदा नुगाई रि स्क्री मैरी दियो गा के मेम होय को पाव फॉर्म न दो बजे नुगाई के।
0: হয় হয় ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯆꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ, ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯤ? ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕꯤꯕ, ꯁꯥꯖꯦꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ꯫
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯤꯜꯂꯅꯤꯀꯣ, ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯀꯥꯅꯝꯕꯗ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ?
1: ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯔꯛꯑꯃꯨꯛꯀꯣ, ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯒꯨꯝꯕꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯁꯦ,
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
1: ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ꯫
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨꯀꯣ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯪꯅ ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ?
1: ꯍꯣꯏ, ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯝ,
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून कनाओ बिरो बनो।
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मिंग लाइफ हम हाई बियो।
1: नो माई थेम बी डू
0: नो
1: तेरा सातों में
0: नो माई थेम बी डू को
1: हाँ
0: हाई बियो ना सीगे
1: सातों
0: ना करी करम बुआ फम पुकत पी गनी
1: मैडम। यम नो नो माई जे मुझे कौन कौन मुझे हाँ मुझे कौन कौन होता है मैं
0: हाय हाय
1: ना सी कौन मुझे यम नो माई जे अगर आइना है नहीं बा चल रही है तो कौन तो क्या क्या तो जावा
0: होय होय हाय बियो
1: तो कोई की हाय बियो कुछ स्कूल का वो नहीं स्कूल का अन्य जे वो नहीं स्कूल की वो जाना ऐसा यम पंग बा अरे स्कूल की वो जाना ताई यम ऐसा करता बा ताक पर दर्दी स्कूल ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯜꯂꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯍꯧꯕꯗ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯒꯠꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯦꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯀꯤꯀꯣ ꯇꯤ ꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯕꯣꯇꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯣꯅꯁꯇꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯐꯪꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯈꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯋꯦꯜꯐꯇꯒ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯈꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ

नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बीबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से। श्रोताओं, आज मंगलवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत, फिल्म का नाम है गुलाम और आवाज़ दिया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

दूसरा गाना आपके लिए पेश है प्यार फिल्म से, आवाज दिया है के एस चित्रा और एस पी बालासुब्रमण्यम ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बीबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं परम सुंदरी फिल्म से कृष्णकली साहा और सोनू निगम के युगल स्वरों में एक गीत।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर आपने सुना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है वार्दू। गीतमाला कार्यक्रम के लिए बस इतना ही आज के लिए, लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। तो मेरा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

akhang kanba leibak ningba hotnaba kanba saithabatana watlaba lamdam shigi nupi singni adubu khudhai bisingi tansiluriba haijiluriba mahai masing asi chahi kaya chupna kana khangdana mangduna leibana anambani mahaina traga skill asibu sitok nanthok laga hena afaba athoi balambi da chatpasina isa isa chaukhat padana tana nupi uibi singi furupu hena thakwang halibani मालेम की चौखट पदा अचौब सरुक अमा ओइरकनी हाइबसी अचेत पथा जबनी इराइलाइना मियोई अमा हेक्तना सानबा गमदबा वाखल लौशिंग टीम वर्क अमादी पांगन पुमनमक चंगबा मसीगी मथकता सगोल तोंगबा अमादी लुइना बहाइब चंगलिबा लुख्रबा अमादी किनिगाई फाउब ओइरिबा मसाना असीगी लमसिदा नुपी ओइबिशिना मिपाइबा अमत लैतना सानरकपसी अंगकपगी मशकनी नशिदी मसाना असीदा थवाई याउना इरमदमगी नुपी सिंगना सानरकपा असी लैंगाकना शु शखंग बिदुना लेबाकी अमदी मालेमगी थाकता सरुक यारुरबा मखोई खरबु लेबाकी ओइबा तोंगान तोंगान बथबक सिंगदा खुदोंग चाबा फंगदुना मसा मसागी इमुंग मनुंगी सेनमितलोंदा काना बंगमले इनखलकली बनाहा नुपी मचा कयामसु मखोई मतुंग इंदुना मसाना असिदा हेन थवाई यारुकतुना पामनरकपागी ममी कया अमसु उरकली मशिमक्सु ऐखोइना मतम कुइरबदगी खलकपा विमेन एम्पावरमेंट की वाखलोंदे युमफम उइबा खोंगथांग अमगी ममीनी इमुंग अमगी चाकथोंग फिसु अमदी मसागी उइबा वाखलोन अपाम पामदा अमत फोंगदोक पंगम जदन लेरंबा मणिपुरी नुपी की मतिक मंगाल सिंह लाइरी की मंगाल फंगलकपा खुनाई की अवन बमितिंग सिंह थमलकपा पुंशी की कांगलोन हेना खंगजिन हैजिलकपदगी नसीदी लमदम सीदगी तमजनिंगाई ओइरबा इचे इचल कयागी ममी सिंह उरगा अखोई पुंबना चौथोक छरी महई मशिंगी डगोईगी इशैगी कलागी सानबगी हिरम खुदिंग मक्ता नुपी ओइबी सिंह बुसु सौगत नसी मरमदी नुपीना मंगाल पुमनमक फंगलबा मतमदा इमुंग अमा लेकाई अमा समास अमा मालेम पुमबा चौखत मिनगनी

वाक्चिंगी लेन फार्मासी देगी खुदल के हम सुबह इन तामिन से सैसक लिब सिंह दी अरबिन सोइब ममदी चित्रा पांगबम सैरिंग बा एकेंद्र तेन सुबा सैरांग बा टोनी हईबम

0: ลีมาให้ครับวันนี้คุยชกไก่หนูอายุกันตางั้นไปเสียพี่รุ่นกันน่าน่ะเสกันไปเดินเต่าเลยสิบ่สะพูยานมีดังทางกันเนี่ยเต่านุก็เต่าน้อยสินี่อ่ะช่วยบอกดังชงจะถูกเย็นเต่านี่นะ
1: ไก่ดูบ่เกี่ยวสายพ่อบ่เดียฮะอายุสิเดินเนี่ยสักกี่ปีช่วยยาเลยให้สินี่อ่ะงั้นสิงั้นดังเดี๋ยวนัดเราให้บ้ามาคงจะสิเป็นสิเป็นหามิเสวัน
0: นี้ก็โดนเกย์เห็นจริงๆไงสิเดินเนี่ยคิดเอาไปทั้งเอาเสียบ่คิดเอาตัวใครเลยบีดามุงั้นสิอาศัยเ 피부 해봐.
1: 잠깐만. 피부 우베니.
0: 아씨, 이제 막 이나 로이들이.
1: 아, 누구래? 그네 남자 독발레로. 티그래. 아이 잘라.
0: 자키 메야로 해봐. 자키 메야로 해봐. 자키 메야로 해봐.
1: 아씨.
0: 자키 메야로 하시는 거.
1: 빠질 진이.
0: 나 이거 찡그디야.
1: 치 차도.
0: 차도
1: 우베니.
0: 자키 뭐 치야야 하시네 이거. 자키 하르디네 앙앙이 낚시하는 비런 거다. 아, 누구 이렇게 되다 봐.
1: 야, 너 능가 우리 내봐. 세 눈자로 띠는 거 사냥 내리고 드라이버.
0: 아이마.
1: 넌 주위 비면. 니마라 그들은 그래야 하면 후배야 너무 지금부터 떡든다 봐
0: 가이 강다바 시드바 타오브 시드
1: 야 군그라 보니 이몽도 강바
0: 우리 영국들이 이카이리 이카이리 애쇼 이카이리 너 비마 밤덕이 러르가네 싸보도 남아이도 이카이드로
1: 마 아두까 도르기
0: 타박 수닝다바 조아리 능원다네 이쁜 시시 망아바니 꼬이 앙아 맞다 아이링에다네 융다 할라 와이다니 이마라 하이라마바니 농아이 곡자키니 호낭
1: 아두리 파레네 아들이 파래냐?
0: 예, 가이 파리 봐.
1: 이반이 뜨자미 내가 로이렇게노. 아들 뭐 해는 파래니 마치 문질러 온 거잖아.
0: 로이해 이 가이디 하이드잖아. 타박 소는가 봐주아리. 까탄 낭도 불러가네. 아 윤주도 살펑가 뭐이. 그거
1: 봐. 잠깐 잠깐 이 윤주도 수 아 거의 마원에 동안에 비제리 아 거의 니디 빨리 들미나 뭐 들리로 보다 봐.
0: 하이마. 예, 낭시디 아가 부민이 해. 아가 부민이 거낭. 아이 코이데 영일라가 레이게시니네 낭하이샤 하 이카이모 까림다 칸드바 자라 해바 낭보 하 영인메노 바시니에 땅 카이시브노 바가위 땅 카이시바
1: 오 땅 카이시게라 마뿜시게라 하닝게 하제젠 아이디 까림데 까이비디 제 마탐시 아이오그레 짤라기미멤 자 비루 오미
0: 야로 해바 신시디 야로 해바
1: 에이 무슨
0: 신
1: 당자이가 그 찐그
0: 찐이가 또 이리 마세요 내 까나로 거 가서나 할로 할로 하시니 ऐसे लमजेन ने हमने यहां का पोनी को नेशनल की थाते ने 100 मीटर ने गोल्ड मेडल के आरंभ में लौर के बताओ नम नम हेलो ऐसे ने को हेलो
1: मैं तो नहीं तो सीधे सीन में सुया दूरी तो इसे माने तो तने को तो चेलो ये चेलो ये चेलो ये से सीन दो पीरो से हिदा तो इले रम के से ले
0: पीरो है बा कर इसे नो पीरो है बा
1: मैं आज दे दी कराई दे को लगी हिदा तू ले के दुई बा पूरी कागज से गेंद से सुया गया सा भाव में वो ले लगे ने तबुदुई खंगा बा चलो कैसे
0: नंगी ना गुंजे ए पचन खंग मसा नि को जवार की ता तो ए ओन ने हौजी तोरा नो है बा
1: हई मो
0: यू था अम बदगी मदु आइन लान तो बदगी नंग तो खे दना
1: होई ने होई ने
0: हौजी अमु थबक सुनिंग दबा अहाव बदि तनिंग बा जवारी कतन मयाम दुगन खोती न वथि गाव दो लिना सो हां ना सा ले री कैसे नंग करीम त खंग्र बरा है बा यम दगी लौ बया म मखै लौ रे हौजी लौ रो रे
1: अनाल कपी ने कई लो
0: कन मना ngang sin maro lama si sem de payo ba ngang sin de payo ba
1: sai lo
0: ni tai ni ni ta uri sin ni ngang ka si
1: ai di hai na gi de
0: sa ai no hai na da bai si bu
1: pu pu de ma ni ne chi di e ta ka oi de tai ni ni ta uri si ta ka ai si
0: e e अनि नि का सुदाउ से से से से हट
1: बा आयो आगा आई आई रे ते बा
0: यू नो ना त पाई होय बा आई रे तो से से हे मंगा तने
1: अदु दिन न ममा
0: का सब दि ममा न तबरो ममा न तबरा है बा
1: ममा न ममा न तो गदो बा
0: गांग से रोल म कपने से से से से गांग ली रातो दान ले बियो से
1: पीरे दे के लोग थोड़े इने अदु न साने को पीरा दी ता

0: आकाशवाणी इंफाल हौसिक ताबिर मतंगी वाफम अयब डॉक्टर उमा मयेंगबम रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर डीएम कॉलेज ऑफ साइंस धनमंजुरी यूनिवर्सिटी
1: सही अहम भरक मनपुर की इरान खम थेंगे वहलीरंगी हेन सम्नब वाखल कयाना तुफ तुफाई चल पीख्रब चिंगद खुदाब फुरूब कना कना की इथिल करीगीद मचे ता तोखा तोखा हिमीनगदरीबनो ने ना ताद पुनसी मरल मसीनी पुन्न हिमीनब पाब फुरूब खरना खलब वाखल इरान सोहल्ब लमदम था फान ने ना तारक्तब कुरे ममांग था एप्रिल तरुक तरह के लोनब अहिंग ट्रों लाबी युम बोम कापसीना पीक्ब आगाम हाथ्रब थोरप इरान मियो अहम सीर अतई कयाना असो अपन नंखीब मायोक चंसल अकनब इहौ नेमथक्की मणिपुर की तंपा की मफम खर इं तप हंजलपग तौरे खानरुरब हेक्त चौंखल था तरेट म्यांमार चंसल खुला पाइबा कामजोंग डिस्ट्रिक की खुल अहम चंसन यूम कैथल मई थादी इंडो म्यांमार बोर्डर खुदाब खुंजा ललोन इटिक तौफम मांगना सेंथोक लंबीदसु अकाइब पीखिबनी फुंजर असेंबली कंस्टिट्यूशन की एम एल ए मणिपुर सरकार भारत सरकार की अकनब मैं चिंसी खुल अहम चथकब अटेक एक्सटर्नल एग्रेसन की कम्युनल नती सेना फोदी थवों फोंबग लोना तंपा की सी एस ओ भारत की नेशनल सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बॉर्डर सेक्यूरीटी इंटरनल सेक्यूरीटी की फ्रेमवर्क अतमनबी है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुलहुमद मे था डिप्लॉय तौदन थम्ब सेंट्रल सेक्यूरीटी फोर्स अथुब इरान लाशनब अकनब मैं चिंसीब फिवम से येगा इंडो म्यांमार गमख की सरुक सेक्यूरीटी की चेक थोर हेगत कांगलुप फुरुक नाकल तोंद थाजब याब अवा थाके इनक्वारी चथब अतोप लेबाक्तगी भारत अटेक चथहलो थाजबसु मियामद पीविगदबनी हाइन वाकत्किब लैकी मतांसिद लैंगाक्की माइकैदगीसु लखोफम थोब थोरां कयाबुदि फोंना लोन लखोलम याय हंदक था मे तराहुमदोइदा कांगपोकपी जिल्लागी कोजिम हाइब खुल अदुर मसक खंगदब मियै खैगी एम्बुस्ता सर्च लीडर अहम हाथ की तरुक असो अपन नंगी मे तरहोमदी नोने जिला की जौजांगटेक खुल मना मसक खंगदब खुला पाइब खरना एम्बुस तौरपदी दोलांग विलेज की लोनब यौना लापिनब मियो अनी असो अपन नंगी कोजिम की थौदों मफम इराब लापतन लैलों वाइफ खुल की एरिया फुरूब नेपाली मचा अनी यौना अतोप फुरूब मिचम कुन्माथो हेन फाजन थम्खी पाव लेकी अमरम कोजिम मिहाद की मायोक्त कुकी जोगी तोंगान तोंगान लुप मखोइना ताब मफम पुंग निफू निपान की टोटल शटडाउन तांग तरह मंगा की अहिंग नोयाई फाउ चथकी सही कुंथा तरुक कुंथा तरह लों की ममांग फुरूब अनीगी मरक्त अचौब इरांग थोक्तुना नकल अनीमक मिसी मिना अमांग अता थोखरब तुंगदा हंदगी इरांगसिना हौखिब फेब्रुवारी थादगी अमुक लाकबनी ममांग की इरांग हौरफम मोरेदगी ओयकी हंदकीना उखरुल जिलागी मनुंगद लिटान सरई खोंगदगी हौखिब फेब्रुवारी तेरह लिटान सरई खोंग मफम कांगलुप मियोय खरना सही निफुरोम सूरब अतोप कांगलुप की मियोय फूब की थौदोक्तगी इरांग अदु हौरक्किबनी मदुदगी हौदोना हौजिक फाउबद उखरुल कामजोंग जिला कांगलुप अनीगी मरक्त नोमोय कापनब युम कैमै थाबना चिंबगी थौदोक कया थोख्रे हंदकी कोजिम जौजांगटेक खुल मनाकी एम्बुस ममांग फाउबद कांगलुप अनीमक्की मियोय अहम सीखी लोना असो अपन कयासुकी तंग तरहुमदी कांपोबगी थौदोक अदुगी मतुंगद नेपाली मचा अनी यौना नगा मिचम कुन्माथो फाजिनखी अदुगा ताफो कुकी खुलगी खुंजा कुलहुमदोय अमना सेनापतिद फाजिनखीबगी पाउ लेखी मरा लेखतब मिचम फाब यारोय हाइबगी अकनब खोंजंग कांगलुप अनीमकना चंसिन्नरब तुंगद मियोय तरामरी तरामरीदी थादोरखरे हौजिक्सु नकल अनीमकना मियोय खरदी थादोरखत्रे Megi tang tara tariki nesten paper amagi ahan balamairo cookies na Manipur da president rule thamba pami haine iri so Sanpur amadi kangpo pira sat kiba cookie miyang ge khongchet aduda yauba cookie gi CSO singna kendrige home minister Amit Sahada Taba memorandum amada Manipur da president rule amuhana thambiu haine palli masina takpadi Sri Yumnam Khemzana losing balenga ama hek lakpodagi ing tappa hanjilakli ba asigi mayukta leibani haina longnabasu yaudawana te aduna hauji Sri Khemzana losing ba lenga

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मार्केट के बारे में क्या?
4: परफॉर्मेंस का बोलो।
3: फ्यूचर
4: मार्केट ट्रेंड देख।
3: सुनने में आएगी
5: आज की खबर देख।
6: पहले ही बोला था ब्रो।
4: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
4: मेरे दोस्त ने बोला।
7: देवी जी की सुनो।
8: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯕꯣꯁꯂꯦꯗꯒꯤ ꯒꯤꯠ ꯑꯃ
1: कैट माने बिल्ली आर ए टी रैट रैट माने चूहा अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ
2: ए मेड मैड मैड माने पागल बी ओ बॉय बॉय बॉय माने लड़का रे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ
1: सी ए टी कैट कैट माने बिल्ली आर ए टी रैट रैट माने चूहा अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ
2: ए मेड मैड मैड माने पागल बी ओ

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: ए

0: हंसी न होगा कोई हमसा भी।
1: लगे ताकने कभी अपने शीशा लेके मुंह देखा भी।
0: तुम ही एक नहीं जहां में हंसी न होगा।

0: लेडी बैड, बैड माने बुरा, ब्यूटी बट, बट माने लेकिन अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: ए मेडी मैड, मैड माने पागल, बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ।
2: मथंग दमुक लोबी रसी मोहम्मद रफी देकी गीत अमा।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने हर श्रृंगार। आज के हर श्रृंगार में अर्पना आपके साथ है। स्वागत करती हूँ आप सभी का। वक्त हो गया है 10:31 और 15 सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं हर श्रृंगार बाजीगर फिल्म के गीत के साथ। आवाज है आशा जी की और साथ दिया है विनोद राठौड़ ने। आप सभी का फिर से स्वागत करती है अर्पना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार में।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किताबों में और चेहरे पर क्या लिखा होता है ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जब आंखों में झांक कर देखते हैं तो आंखें झूठ बोल नहीं सकती और सच निकल ही आता है। अब देखिए ना, जब से देखा इन आंखों में झांक कर कोई और आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए हैं दीवाने कि अब कोई और अपना सा नहीं लगता। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज होगी, बरसात फिल्म से गीत होगा।

प्यार, दोस्त प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस नहीं बल्कि खूबसूरती से व्यक्त भी किया जाता है। जब दिल में किसी के लिए खास जगह बन जाए तो लफ्ज खुद ब खुद शायरी का रूप ले लेते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज और साथ है के एस चित्रा का, फिल्म का नाम है लव।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वक्त हो गया है 10:50 और 4 सेकंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, हर श्रृंगार, और आज आपके साथ है अर्पना। तो चलिए अगला गीत भी है उसके बारे में आपको बता दूं, अलका याग्निक की आवाज है, साथ है कुमार सानू का, फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

जी हाँ, मिलने को दिल तो करता है जब बात होती है गहरी रातों की। जब भी तेरे बिना रात होती है, दीवारों से अक्सर बात होती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जब भी तेरे बिना रात होती है, दीवारों से अक्सर बात होती है। सन्नाटा पूछता है हाल हमारा हमी से, और बस तेरे नाम से ही हमारी बात की शुरुआत होती है। लता जी की आवाज में अगला गीत होगा शक्ति फिल्म से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार, और 11:10 पर होगा गीत मेरे मनमीत संग्रहूंगी आपके मैं अर्पणा। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए और 11:00 समाचार। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए

0: श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suomotu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defence Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart, Ahn Kyu-pak. The IMD has warned of severe heatwave conditions in North India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना. आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. वक्त हो गया है 11:11 और 5 सेकंड. तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध गीत के साथ. गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में. फिल्म चोरी चोरी से गीत होगा और इसके बाद आप सुनेंगे फिल्म दिल्ली का ठग से गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में. फिल्म में अभिनय किया था किशोर कुमार और नूतन ने. तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए. आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ गीत मेरे मनमीत में.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। आने वाले दो गीतों के बारे में आपको बता दूं, गीता दत्त की आवाज में अगला गीत आप सुनेंगे मदन मोहन का संगीत है, फिल्म का नाम है भाई भाई, और इसके बाद होगा फिल्म पेइंग गेस्ट से गीत, आवाज है किशोर कुमार की और संगीत एस जी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो इन दो गीतों का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर, और वक्त हो गया है 11:20 और 9 सेकेंड।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना. फिल्म का नाम है दिलेक मंदिर और संगीत है शंकर जय किशन का. वक्त हो गया है 11:35 और 8 सेकंड. आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत. आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर.

मजरू सुल्तानपुरी की लिखी हुई कव्वाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी हुई लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में आपने सुनी मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से और आप सुन रहे हैं

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत और आज आपके साथ है अर्पना। अगले जो दो गीत आने वाले हैं वो दोनों गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और दोनों का संगीत आर डी बर्मन का है। पहला गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है अलग अलग। और इसके बाद जो दूसरा गीत आएगा वो है शब्बीर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम है बेताब। तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। ये दोनों गीत जैसे मैंने बताया आनंद बख्शी के लिखे हुए हैं और संगीत आर डी बर्मन साहब का है।

11 बजकर 55 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत का आज का ये आखिरी गीत होगा फिल्म नसीब से एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ संगीत गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज है लता मंगेशकर की इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार हंसते मुस्कुराते रहिएगा और आकाशवाणी के संग रहिएगा हमेशा अर्पणा को दीजिए इजाजत नमस्कार अपना ख्याल रखिएगा और गीत के बाद समाचार एफएम गोल्ड पर जरूर सुनिएगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले की आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय के में दायर याचिका को में से एक में से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति

खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, अपने होने का ही अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। कौन समझेगा, कौन समझेगा यहाँ सच की तह तक जाकर, हम तो बस बीच के किरदार किए जाते हैं। दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अगला गीत, फिल्म का नाम है जिद्दी, आवाज है लता मंगेशकर की।

कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बत में कब इतना हिसाब होता है। कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना, बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना। उदास रहने से चेहरा खराब होता है, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। उसे पता ही नहीं कि प्यार की बाजी जो हार जाए वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना। उदास रहने से चेहरा खराब होता है, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शक्ति और आवाज है लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कहते हैं प्रेम को लिखना, प्रेम को कहना और प्रेम को बयां करना इस दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। प्रेम को लेकर किसी ने कहा कि प्रेम कोई शब्द नहीं जिसे लिख पाओगे, प्रेम कोई अर्थ नहीं जिसे समझ पाओगे, ये तो धड़कनों में बहता स्पंदन का सफर है, बह गए तो बस बहते चले जाओगे। और प्रेम में परिपक्वता तभी आती है जब हम ये स्वीकार कर लें कि हर संबंध पर अधिकार नहीं होता, प्रेम की स्वतंत्र वृत्ति ही उसकी खूबी है। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। यहाँ छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, आवाज है सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया श्री मोदी की यह दो दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं लोकसभा से कमलजीत सहरावत बैजंत पांडा और डॉ निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावड़े सुजीत कुमार और उज्ज्वल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने की इस महफिल में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, आवाज है लता मंगेशकर की।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी। वक्त नदियों को उछाले की उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले की उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, तारीख बदल जाएगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हमराज, आवाज है महेंद्र कपूर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी और आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह दो दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी, कुछ कही कुछ अनकही, यादों का पुल जो पाट देता है हमारे बीच की गहरी अनंत खाई जैसी दूरियों को। उस पुल के किनारे उग आई हैं मेरी बातें, उस पुल के किनारे उग आई हैं हमारी बातें, फूलों की तरह जिनकी खुशबुओं से भर गई हैं पुल की दरारें, खुशबुओं की तरह से खुशबुओं से भर गई हैं पुल की दरारें। ये पुल एक आश्वासन है कि तुम मेरे पास हो, क्योंकि यादों के पुल टूटा नहीं करते, यादों के पुल टूटा नहीं करते। अगला गीत, फिल्म का नाम है भीगी पलकें, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म का नाम है धर्म कांटा, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। वो नाम जो धड़कनों में उतर गया था चुपके, अजीब है कि अब उसका ख्याल नहीं आता। मैं अपने ही साये से बात करती रहती हूँ, मैं अपने ही साये से बात करती रहती हूँ, मगर जवाब में भी कोई जवाब नहीं आता, मगर जवाब में भी कोई जवाब नहीं आता। कभी जो दिल में था वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है लोफर, आवाज है आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
1: दस

मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। बहुत से गीत और उनकी पंक्तियां दिल में जाके बस जाती हैं। ये गीत आपने सुना प्रोफेसर फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। मोहब्बत की तड़प ये कह रही है ना तड़पाओ, और सताने को अब तो विराम दो।

0: सच्ची मोहब्बत में वाकई ही असर होता है जो एक दूसरे की बात दोनों के दिलों तक पहुंच जाती है। खैर आपको बता दूं कि ये गीत राजकुमार फिल्म से था, हसरत जयपुरी के बोल थे और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे आराधना फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है
2: क्या?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों पे निखार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और युगल गीत आप सुन रहे हैं हम रही कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला गीत तेरे मेरे सपने फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। नीरज के ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है SD बर्मन ने।

दोस्तों, कुछ गीत तो वाक्य में ही हमारे मन को मोह लेने वाले होते हैं। जी चाहता है जब भी सुने साथ साथ गुनगुनाते भी रहें।

आंधी फिल्म से ही अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गुलजार की शब्द रचना थी और संगीत से संवारा आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ मधुमती फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

हरियाली और रास्ता है। इस फिल्म से आपने अभी गीत सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरे जयपुरी ने शब्दों में पिरोया था और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे नया दौर फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हम रही कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गीत अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

जहां लगन लग जाती है वहां छूटती नहीं है। ये गीत आपने सुना काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ, आप पहचान जाएंगे इसकी धुन सुनकर, और इस गीत में अपनी बात को कहने का अंदाज ही अलग है। लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ गीत है और फिल्म का नाम है चोरी चोरी। शैलेंद्र की शब्द रचना है और तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने।

आपके पीछा तो वही करेगा ना जो आपका अपना होगा. अरे कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ अनाड़ी फिल्म से गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में. शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जय की शंकर.

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह दो दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार

0: से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलेगी। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with the leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।

अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ. स्वीकार कीजिए फिर से मेरा नमस्कार.

0: पता नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और यहाँ तो गाने वाले का भी जवाब नहीं है। पेइंग गेस्ट इस फिल्म से गीत था, किशोर कुमार का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ चिराग फिल्म से, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है और मजरू सुल्तानपुरी ने शब्दों में पिरोया, धुन बनाई है मदन मोहन।

0: फूल बने अंगारे, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा, और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

वाकई में ही दोस्तों, हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हों तब भी लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। अगर बुरा रास्ता मिल जाए तब तो मालूम ही है कि लोग कुछ कहेंगे। इसलिए जहां आपको लगे, आपका दिल माने कि आप सही हैं, वही काम कीजिए। ये गीत था अमर प्रेम फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हूँ ताजमहल फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी का गीत है और रोशन का संगीत।

अब अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गीता दत्त की आवाज में भाई भाई फिल्म से राजेंद्र कुमार ने गीत को लिखा है धुन तैयार की है मदन मोहन ने दोस्तों बहुत गीत ऐसे लगते हैं बहुत समय बाद सुन रहे हैं लेकिन आज भी दिलो दिमाग में तरोताजा रहते हैं

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपने दोस्त वंदना चुक के साथ।

दोस्तों, दोस्ती में ही ये उम्मीद की जाती है कि हमारा साथ वक्त पर कोई जरूर देगा। बहुत कम लोगों में से आप किसी पर अपना हक जता सकते हैं, वरना दुनिया में तो बहुत लोग हैं। जुर्म फिल्म से ये गीत था, साधना सरगम और कुमार सानू का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गुमराह फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी की रचना है और रविकाल संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था मेरे महबूब फिल्म से शकील बदायूनी की रचना थी नौशाद का संगीत कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी और साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और जयदेव का संगीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को

0: वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपनी ब्रांड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी 25 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी इस दौरान वे कोलकाता आगरा जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है आज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे
1: Prime Minister Modi said, in past 10 years, bilateral trade between India and Nordic countries has increased about 4 times.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं

जब इंसान मन से धैर्य खो देता है, हार जाता है, तो बस एक ईश्वर के अलावा उसे कोई और रास्ता नहीं नजर आता।

रफू चक्कर, इस फिल्म से ये रचना थी। गुलशन बावरा का गीत था और कल्याण जी आरान जी का संगीत। दोस्तों, भोर का समय वाक्य में ही आपको शांति और ऊर्जा देता है, इसलिए उसका सुमिरन करके ही बिताना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा दिन तो सांसारिक कार्यों में बीत जाता है।